0: 6:30 बजेसम्म समन्वय महिला पतञ्जलि योग समिति चितवन, महानगर योग समिति महिला महानगर योग समिति चितवन, आयोजक भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर ओडा कार्यालय।
1: सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 MHz
0: साहिनो समय सूचक अहिले बिहान को 6 बजे AM यति बेला बिहानको 6 बजे अब तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो साहिनोबाट साझा खबर।

0: सूचना संगीत र मनोरञ्जनको अटुट साहिलो यो हो रेडियो साहिलो 99.8 मेगाहर्ज
1: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: सूचना सङ्गीत र मनोरञ्जनको अटुट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ज।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।